तो विदायाति कन तिंदेक उन अल्लाह उकासन उन ओधई इदियोप कस्से गाथा आती दिया वा तक उरावी कदाय कब की उन ऊधई इकतीनेक उन अगली तेफे तोन तफकीर एदने न तफकीर एदने उम्बरू उफकरती हु उम्बरू दाई था आती फकरती एक बरुक दाई था आती सुरते वे अरे उन उगरोयोक सूगे तीत उगरोयोक शिविप्तीत उगरोयोक दिसुगदे तीत उनानी ईकन काद अमर काद सके काद तिंदियक उन उगनुक जुआसई परोखन दिसुगदे इन्यु बेत तुनाती दाई उम्बरुक उनोधई सूर बाय तिंदियक दाय काब अक तिंदियक उन उगरोक सकनायत उनानी नात अक कप काक सूर ए भी एक दाय काब अकते दीतित उगरोयोक शज्येति सुरते भी एक सुरते भी आ दाय काब तिकते मल्ला अब तू राव इन्हें इन उन उधई सूर बाय तिंदियक अंजा तिंदियक अम्से अर निवारी निश्रिका मदारस्ते वह निवारी वारिब अरे रिशित्तित नात इमेर निवारी कस्सा इंबरा उत्तून उशानी तेफे उशानुक तुहंताई तुक एकति उयाय हमादुक दिवतियक तिमेबडीन वयाब शाबतियक दियाबा को उशानी मयुक का अप्तिकति आया तो न थो यक्तियत जमानेक दई गस्सा मेतित जमानेक दई गस्सा मेतित नियदोब ओन उदमान उए फेनाइब उम्बरुक उमम ही ओब यक्ति ओब हंकाई तु सके तिंदी कस्तो दबायोग दास्ति निया हमसे बक्सा के अंदी बक्सा के अंदी बक्सा के अंदी दीतित दबाओग के तिप्तित मल्ल गात कमीनी सकती ओब तू न अरुआ का तिकति दाउर का दोक तिकति मल्ल फाइसा का अप्तिकति तो राव तू ओन ऊधई ओन लमान नफसी व एदने सिगा बिन नफसी एदने न तेहे असिगा बिन नफसी एदने तू न ओन उगरोयोक ओन उधई तेहे तो न वो उधई का ना तक का बिताए तो न ओन उगरोयोक शिविप्तित है सूरते भी एक उम्बा तू सूरत स्तोबियो उम्बा तो यार इन सरिका यकेनो मलो सना व मई सना ऐ सना ते सूरे भी नहीं तसगुद असरमा देखातीनो इम्बते हो हई रिबीतनी नातू हई दन्नी नातू दिस अकई उनदई कनात अका काप कित्ता तिन दिया उमिक्रीब दन्नी आया उगरोयो नाथ सीस्तियो बेन ओदोर तो न है यकीनी लहित लहित वितकाई ओदे सूर आमियात बरेती आमियात तरुदाय काप अका आमियात इत्थाय आते सूर एवी सकनाईनी अगरीनी ओदे रातीनी उन वर वेरे सूर एव मल्ला तू न तू राव उन उदई अल इसरार एदने तू न हेनन अल इसरार एदने उम्बरो तो न सका मियादी उम्बरुक दाय अकर गुरुमाई होई रिवीति थोई अकीत अकरा था आती शगामती ओब तो तोन लहित लहित बितकाईत उम्बरुक उम्बतो ना दका कब कित्ता को फाइस्ती नहीं आया सूर तिस्तो भी आया तो राव तू हिनिन ने अदेत उन उधई उगरो युदा एता गिरने तून उम्बतु दाईत अरवे किश विवाया दीम अरवे किथा गेताया उन उगरो योक उम्बरुक तुशबूब तो राव तुम्हें युकती हुआ उन उगरोयोक हर्री वो उगरोयोक हर्री वो उगरोयोक मर्री आया गदो गहने तोन बतो कन आया तिकते नहीं आई तुत्तोन गदो कहे तोन तिकते नहीं उप फर्री आया सुख फर्री आई उन बतो लहित लहित बितकाई गाड़े क्वासी सूर ही तेबे उधाई कनाद का काव कित्ता को उधाई दबाई दात नहीं है यार एक तिमदार इस्ते अगर इस्ते नोप ओन बंजीन सूर बे ईवान दाई बे इकतान तेरने ओन ओदोर किराफी एने अगर या नदीना दाए मल्लाब तोरा उतू तोन शिविबना बेश शिविबना दाई बाना फगरा बाना दीतित तेन ति वाविंतु तेन ति दाई तु होई दन्नने उब बेन ओदोर और लेत लेत बितकाई उधाई दबाई दैनी सूर की नामीनी सूर की नाब इकती उधाई दबाई दैनी बेत तुनाती द इन्हें निन इन बरे कस्से तु दाहदी दनाई उन उगरोयो कुवत शख्सियाई तोकना हुआ बै इसे किरना वाविंका बै इकतान बेन बतियो द नया दोक अंदाब उन्हें निन उधयू नई ओम बराक एतो न तुन सरीवे तुक न कन्ना ओन उधई शिवो बेदनेक ओधई सूरी दाया तिंदियक नाथ कन तिंदियक ओम बरुक उगरोयोक शिबीत उगरोयोक गत दाई न तवायेतित विसरार वो यदने तोना वो तोना अकर गुरुमाई समेतित ओम बतो फाइसे अंदे फाइसानी फाइसे अंदी नाथ अका कपका के दीतित का सूरोई तेबियक तेका नी आया नाथ होई मर्री आया यारेक न अरे इस्तिगलाले आयदने तून हेनिन निसरीवेत तून ओं और यकीनी ओब उम बरुक नाद अका कब किताया उगरोयुक उकनाउक फाइस आया फाइस्तीनी आया सूर बाय आया तिंदी ओब और उकनाय उम बता इथमीन और ईब तित्ता